0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: एपिसोड 95। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने कुम्हार के यहाँ धूप में सूखते हुए मिट्टी के कच्चे घड़ों को देखा है? जब तक वे घड़े आग की भट्टी में तपकर पक्के नहीं हो जाते, तब तक वे बहुत नाजुक होते हैं। अगर हवा का एक तेज झोंका आ जाए या कोई छोटा सा जानवर उनसे टकरा जाए या पानी की कुछ बूंदें उन पर पड़ जाएं, तो वे घड़े पल भर में टूटकर वापस मिट्टी के ढेर में बदल जाते हैं। उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारा यह शरीर भी उस कच्चे घड़े जैसा ही है। बाहर से यह कितना भी सुंदर और मजबूत दिखाई दे, लेकिन इसके भीतर की सांसें बहुत नाजुक धागे से बंधी हैं। कबीर साहब आज हमें इसी काया की वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं, ताकि हम उसके रहते जीवन के असली अमृत को पा सकें। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत दार्शनिक सूत्र। यहु तन काचा कुंभ है, चोट चहू दिसी खाई, एक राम के नाव बिन जदी तदी प्रले जाई। यहु तन काच का कुंभ है, चोट चहू दिसी खाई, यहु तन काच का कुंभ है,

0: टाइम।
1: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, यहूं तन कांच का कुंभ है, यह जो शरीर, यह मिट्टी का कांच का एक घड़ा है, चोट चहूं दिसी खाए। इस कच्चे घड़े पर चारों दिशाओं से लगातार चोटें पड़ रही हैं, समय की चोट, बीमारियों की चोट, चिंताओं की चोट और बुढ़ापे की चोट। हर पल यह काया किसी न किसी संकट से घिरी हुई है। अगली पंक्ति में इसके अंत का सच बताते हैं, एक राम के नाम बिन, उस एक परमात्मा के नाम के बिना, उस आत्मज्ञान के बिना, जदी तदी प्रलय जाई। यह शरीर जदी तदी यानी आज या कल कभी भी प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर इसके भीतर राम नाम का अमृत नहीं भरा गया तो यह कच्चा घड़ा बिना किसी अर्थ के मिट्टी में मिल जाएगा। अगर इसे हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह दोहा हमारी भौतिक देह की नश्वरता और आध्यात्मिक साधना की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। वेदांत में भी इस शरीर को क्षणभंगुर माना गया है। चोट चहूं दिसी खाई का अर्थ है कि यह संसार दुखों और बदलावों का एक महासागर है, जहां हमारा शरीर हर पल काल के थपेड़े सह रहा है। कबीर समझा रहे हैं कि इस कच्चे घड़े को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस घड़े के टूटने से पहले इसके भीतर राम नाम यानी शाश्वत चेतना का रस भर लें। जब चेतना जागृत हो जाती हैं तो शरीर के मिटने पर भी आत्मा का प्रलय नहीं होता, वह अमर हो जाती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शरीर के अहंकार को छोड़कर इसकी सच्चाई को देखिए। हम जिस काया को सजाने में, जिसके ऐशो आराम में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वह कितनी नाजुक है। एक छोटी सी बीमारी या काल का एक इशारा इसे पल भर में मिट्टी कर सकता है। आज कोशिश कीजिए इस कच्चे घड़े के रहते उस सच्चे नाम को जपने की। राम नाम से जुड़ने का मतलब है संसार की नश्वरता को पहचानकर उस अविनाशी परमात्मा की शरण में जाना। इस काया का सदुपयोग कीजिए, इसे सेवा और सुमिरन के काम लीजिए, ताकि जब यह घड़ा टूटे तो इसके शरीर, इसके भीतर के केवल पवित्रता और आनंद ही बिखरें। समय बहुत कम है, आज ही जाग जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
2: श्रोत्यो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
3: माणसाला माणूस बनवणाऱ्या विवेकी ज्ञान केंद्राकडे आधारभूत म्हणून पाहणाऱ्या माणसाला वेगवेगळ्या धर्मग्रंथांनी काबीज केले, तशी धर्मांधता फैलावत गेली, धर्माधर्मामधील माणसे वेगवेगळी मानली गेली, माणसाचे जगणे वागणे आचरण दिनचर्या व्यवहार जीवन व्यवहार पूजा अर्चा स्तोत्रे यज्ञ होम हवन नमस्कार धर्माच्या विविधतेप्रमाणे वेगवेगळे ठरत गेले। धर्माची स्थापना आणि त्यावरील केंद्रवर्ती दैववादाची काल्पनिकता पोसाटली गेली, दैववादाची स्तुती भजन पूजन फैलावत गेले आणि वास्तव जगणे नामशेष झाले कल्पनेच्या हिंदोळ्यासह। हे मानवा, तू भोवंडत गेलास, कलंडत गेलास, नको तिथं अन नको तसा सांडत गेलास, स्वतःला बुद्धी असूनही। तुला समजलेच नाही तुझे मन, तू जाणलेच नाहीत तुझ्या संवेदना, तू तपासलेच नाहीस वर्तमानाला, तू अडकत राहिलास सातत्याने भूतकाळात आणि भविष्यकाळात। वर्तमान संवेदनेतील तुझे मन तू कल्पनेत विसरलास म्हणून तुझ्याच मनाने तुला दगा दिला आणि असंख्य विचारांचा तुझ्यात हैदोस माजला। तू नाही थांबू शकलास स्वतःचा स्वार्थ, तू नाही थांबू शकलास तुझ्यातील राग द्वेष लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर षडरिपू आणिक असंख्य व्याधी। तुझ्या मनातील काल्पनिक अपेक्षांनी तू झालास सैरभैर, सतत इकडून तिकडे तिकडून इकडे शोधत बसलास स्वतःला धर्माधर्मामध्ये आणि विश्वासाने टाकली मान त्यातल्या काल्पनिकतेवरती, स्वतःच्या मेंदूतील विवेकाला गाडून कालप्रवाहात शिक्षणाने संशोधनाने तू विकसित होत गेलास आणि दृश्यमान होत गेलास तू तुझ्यातील ज्ञानशक्तीच्या आविष्कारणाने। तेव्हा तू स्वतःच चपापलास दचकलास आणि मधून मधून समाधानीही झालास। भौतिकतेचा उत्कर्ष, तुला झालेला हर्ष यामध्ये तू स्वतःला विसरलास, वर्तमानातील वर्तनाने लाथाडलास, भौतिक सुखाने पछाडलास, असंख्य धुमाऱ्यांमध्ये तू स्वतःला विसरलास। हे मानवा, तू समूहागणिक जसा अडकत गेलास धर्माधर्मामध्ये तसा अडकत राहिलास पंथापंथांमध्ये। तू मिरवलीस शेखी तुझ्या पंथाची आणि सातत्यानं म्हणत राहिलास मी श्रेष्ठ आहे, मी श्रेष्ठ आहे, मी श्रेष्ठ आहे। तुझ्या श्रेष्ठपणाच्या अहंभावाने आपापल्या समूहांची तुष्टी करण्यासाठी काही स्वयंघोषित विद्वान जन्माला आले। त्यांनी माणसा माणसात भेद करणारे तत्वज्ञान पुन्हा पुन्हा जन्मास घातले। हे मानवा, तुझ्या जन्मण्याचा आरंभ बिंदू कोणास ठाऊक, तो छातीठोकपणाने सांगणारे पुढे येऊ लागले। तसा तू त्यांच्यावर विश्वास ठेवून मोकळा झालास, तेथेच तुझ्या बुद्धिवादातील आंधळे पण सिद्ध झाले। म्हणे एका विराट पुरुषाच्या मुखातून माणसाची निर्मिती झाली, बाहूतून उदरातून आणि पायातूनही माणसाची निर्मिती करताना थकले नाहीत माणसा माणसात भेद करणारे धर्मांध विद्वान। त्यांनी सृष्टीची रचना कळत त्यांना सृष्टीची रचना कळते अशी छाती ठोकपणे सांगून त्यांनी देवापासून आदाम तसेच बरगडींपासून ईव देखील निर्माण केली। स्त्रीपुरुषाच्या संयोगातून नंतर माणूस निर्माण

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। हमारी स्वाधीनता के संघर्ष की अनगिनत गाथाएं आज इतिहास में दर्ज हैं। हम ये भी जानते हैं कि क्रांति का पथ अंधेरी गलियों सा था। क्रांति की गतिविधियां गुप्त तरीके से की जाती थीं। इसलिए कितनी ही शहादत एकांत में, निर्जन में, खामोशी के साथ भी हुई। ठीक शहादत के पल की बहुत सी बातें आज हम पढ़ सकते हैं। अगर वो गाथाएं आज हमारे पास हैं, तो इसलिए क्योंकि उन पलों से बचते हुए कुछ सौभाग्यशाली क्रांतिकारी जिंदा रह गए और आंखों देखी उस घटना को उन्होंने आगे चलकर दुनिया के सामने रखा। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे सुखदेव राज, जो स्वाधीनता संघर्ष की अमिट स्मृतियों के साथ आजाद भारत में 26 साल तक रहे और उन पलों को उन्होंने संस्मरण के रूप में लिखा, जिसका नाम है जब ज्योति जगी। सुखदेव राज दो बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं के चश्मदीद रहे हैं, जिन्हें इतिहास के पन्नों में पढ़ते हुए आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। उनके लिखे वो बेहद महत्वपूर्ण संस्मरण हम आपसे साझा करें, उसके पहले सुखदेव राज के क्रांतिकारी जीवन से आपका परिचय कराते हैं। सुखदेव राज का जन्म 7 दिसंबर 1907 को लाहौर में हुआ था। उनके पूर्वज पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर के रहने वाले थे। सुखदेव राज का क्रांतिकारी जीवन 1929 में शुरू हुआ, जब उनकी भेंट क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से हुई। वो उनसे बेहद प्रभावित हुए। उन्हीं की प्रेरणा और सहयोग से सुखदेव राज ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पुनः आरंभ की और बीए पास करके एमए में प्रवेश लिया। भगवती चरण ने उन्हें क्रांतिकारियों से संपर्क करने के लिए कलकत्ता भेजा। सुखदेव राज अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पहले से ही सीआईडी की नजर में थे। कलकत्ता में काम पूरा न होता देख वो बर्मा पहुंच गए और वहां जासूसों के जाल में फंस गए, लेकिन अपनी चतुराई से सीआईडी को चकमा देकर वो कलकत्ता वापस आ गए। यहां एक मित्र के घर रुककर उन्होंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन किए और फिर एक सीआईडी ऑफिसर के साथ वो मुफ्त में यात्रा करते हुए लाहौर पहुंच गए। उस सीआईडी अफसर ने मुफ्त में यात्रा तो कराई, सहयोग का प्रदर्शन भी किया, लेकिन लाहौर पहुंचकर उसने पुलिस को उनकी सूचना दे दी। वस्तुतः सुखदेव राज फरार नहीं थे, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। सुखदेव राज चंद्रशेखर आजाद के साथ क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से संलग्न थे। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना में भी वे शामिल थे। भगत सिंह जेल से मुक्त हों, इसकी योजना कैसे बनी और उसमें भगवती चरण वोहरा की शहादत किस तरह से हुई, इसे सुखदेव राज ने अपने संस्मरण में लिखा है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।

भगत सिंह को छुड़ाने की तारीख 1 जून 1930 तय हुई। इस उद्देश्य से बम की टेस्टिंग के लिए रावी के किनारे जखीरे के जंगल को चुना गया। इसमें भाग लेने के लिए भगवती चरण वोहरा, वैशंपायन और सुखदेवराज नाव में बैठकर रावी के पार गए। इस घटना का जिक्र करते हुए सुखदेवराज अपने संस्मरण में कहते हैं, आखिर बातचीत करते करते हम रावी पर जा पहुंचे। नाव वहां पर तैयार खड़ी थी। मल्लाह मोहम्मद दीन ने उसे हमारे हवाले किया। भगवती भाई और मैं दोनों ही नाव खेना जानते थे, इसलिए मोहम्मद दीन को साथ लेना हमने उचित नहीं समझा। इसके अतिरिक्त कार्य की गोपनीयता की दृष्टि से भी उसे साथ लेना उचित नहीं था। नाव लेकर हम तीनों 1.5-2 फरलांग से अधिक चले गए। दोपहर के 11 बजे का समय और निर्जन घना जंगल। कुल जमा 3 प्राणियों को छोड़कर दूर दूर तक कोई पक्षी भी पर मारता हुआ वहां नजर नहीं आ रहा था। भगवती भाई ने बम निकाला, देखा तो बोले, इसका ट्रिगर तो ढीला है। इसके बाद मैंने और वैशंपायन ने भी बम को देखा। ट्रिगर वास्तव में ढीला था और ऐसी स्थिति में विस्फोट करना खतरे से खाली नहीं था। मैंने और वैशंपायन ने कहा कि ये बम टेस्ट करने के योग्य नहीं है, मुनासिब यही है कि वापस लौट चलें, कल दूसरा बम लाकर टेस्ट कर लेंगे। परंतु भगवती भाई ने हम लोगों की एक नहीं सुनी। वे बोले, 1 जून को एक्शन करना है और 28 मई आज हो गई है, यदि आज बम टेस्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, ये काम आज किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। होशियारी के साथ मैं बम को चलाए देता हूं, तुम लोग एक तरफ हट जाओ। भगवती भाई बम फेंकने के लिए गड्ढे के पास ही एक बाउंड्री स्टोन पर खड़े हो गए। अभी बम का पिन निकालकर उसे फेंकने के लिए हाथ में भी न उठा पाए थे कि विनाशकारी विस्फोट उनके हाथ में ही हो गया। चारों ओर धुएं के बादल छा गए। हम लोग भगवती भाई की ओर दौड़े। धुआं कुछ कम हुआ तो देखा कि वो जमीन पर बुरी तरह घायल होकर पड़े हैं। उनका एक हाथ कलाई से उड़ गया था, दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थीं, पेट में एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, कुछ आंते निकलकर बाहर आ गई थीं। उनके शरीर से प्रवाहित रक्त की असंख्य धाराएं मातृभूमि का अभिषेक किए जा रही थीं। वैशंपायन ने अपने शरीर के तमाम कपड़े फाड़कर भगवती भाई को पट्टियां बांध दी, परंतु रक्त की अविरल धारा उनके शरीर से बही जा रही थी। पास के गड्ढे का पानी हैट में भरकर वैशंपायन ला रहा था और उनके मुंह में रह रहकर डाल रहा था, लेकिन उनकी हालत प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। मैं स्वयं घायल ही था, लेकिन वैशंपायन को नगर की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे भगवती भाई के पास छोड़कर सहायता के लिए मैंने बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन श्रोताओं, सुखदेवराज के प्रयास निष्फल रहे। जब तक क्रांतिकारियों की सहायता शहर से जंगल तक पहुंचती, भगवती चरण वोहरा शहीद हो चुके थे। सुखदेवराज लिखते हैं, घना अंधकार, टॉर्च की रोशनी के सहारे हम जंगल में घुसे। सहायता के लिए आए क्रांतिकारी छैल बिहारी को पुकारना प्रारंभ किया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इसी बीच टॉर्च की रोशनी में सफेद कपड़े की धज्जियां दिखाई दी, उन्हीं के सहारे आगे बढ़े। बाबू भाई भगवती चरण का शरीर शांत एकांत में पड़ा था। सूर्यास्त के साथ ही बाबू भाई महायात्रा का बहुत सा भाग चलकर पार कर चुके थे। दूर, बहुत दूर, हमारी पहुंच से बाहर, केवल हमारी श्रद्धांजलि ही उन तक पहुंचने में समर्थ थी। इसलिए उन्हें ले जाने के लिए हम जो चादर लाए थे, उसी में उनका पार्थिव शरीर लपेट दिया। एक मिनट मौन हो शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर, एक महान नेता खोकर हम असहाय ही बंगले पर वापस लौटे। इस तरह सुखदेवराज के संस्मरण से घने जंगल के एकांत में एक खामोश शहादत के पलों के हम साक्षी होते हैं।

और श्रोताओं, दूसरी महत्वपूर्ण घटना सुखदेव राज जिसके चश्मदीद थे वो थी चंद्रशेखर आजाद की शहादत। चंद्रशेखर आजाद को वो भैया कहकर पुकारते थे और सुखदेव राज को चंद्रशेखर आजाद सिराज के छद्म नाम से बुलाते थे। कई साथियों के गिरफ्तार हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद का दल बहुत छोटा रह गया था। क्रांति गतिविधियों को चलाने के लिए उन्हें कानपुर और इलाहाबाद आना जाना पड़ता था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी सन 1931 की सुबह चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज किसी गंभीर समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे। उनके एक गद्दार साथी वीरभद्र तिवारी ने उनकी उपस्थिति की सूचना पुलिस को दे दी। देखते ही देखते पुलिस के एक बड़े दल ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। अपने संस्मरण में सुखदेव राज लिखते हैं, अभी भैया से बातें हो ही रही थी कि एक मोटर सामने सड़क पर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर और दो कांस्टेबल सफेद कपड़ों में उतरे। हम लोगों का माथा ठनका। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? भैया का हाथ अपनी पिस्तौल पर गया और मेरा हाथ भी अपनी पिस्तौल पर। गोरे ने जैसे ही बातें शुरू की, हम दोनों ने पिस्तौल खींच ली और गोली से उत्तर दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल पहले छूटी। गोली भैया की जांघ में लगी, आजाद की गोली गोरे के कंधे में लगी। दोनों ओर से दनादन गोलियां चल रही थीं। गोरे की गोली से भैया की जांघ की हड्डी चूर चूर हो गई। एक गोली उनकी दाहिनी भुजा को चीरती हुई फेफड़े में जा घुसी, फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उनका बायां हाथ ही बिजली बनकर कौंध उठा था। उनकी पिस्तौल गर्जी और नॉट बाबर की कलाई टूट गई। पिस्तौल उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने मोटर पर भागने की चेष्टा की, परंतु इससे पहले ही भैया की गोली से मोटर का टायर बेकाम हो चुका था। प्राण बचाने के लिए नॉट बाबर ने मौलश्री के एक पेड़ की आड़ ली। सिपाही कूदकर नाले में जा छिपे, इधर हम लोगों ने भी एक जामुन के पेड़ की आड़ ली। एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई। अचानक भैया ने कहा, सिराज तुम निकल जाओ। ये वास्तव में उनका कवरिंग एक्शन था। अपने प्राणों को होम करके भी अपने एक साथी की जान बचाने के लिए वे आतुर थे। भैया अक्सर कहा करते थे, जो क्रांतिकारी लड़कर भाग निकलता है वो दूसरी बार के संघर्ष के लिए जीवित रहता है। ये सब सही होते हुए भी भैया को पार्क में शहादत के समय छोड़ देने का दुख मुझे सदा रहा है। भैया के प्राण विसर्जन के उपरांत भी उनके शव के पास फटकने का साहस किसी अफसर या सिपाही में नहीं था। वे दूर से ही गोलियों की बाढ़ दागते रहे। जमीन पर पड़े जामुन के पत्ते उनके रक्त से तर बतर हो गए थे। उनकी शव यात्रा के दिन सारे शहर में हड़ताल रही। शव यात्रा में चलने वाले लोग नंगे सिर और नंगे पांव थे। अस्थियों पर शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। सभा में सर्वश्री टंडन जी, मंगलदेव सिंह, काशीराम तिवारी, वसंतलाल शर्मा, शिव विनायक मिश्र, पद्मकांत मालवीय, कमला नेहरू और शचीन्द्रनाथ सान्याल की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सान्याल ने भाषण दिए। श्रीमती सान्याल दो चार वाक्य ही उस दिन बोली, परंतु उन दो चार वाक्यों में आग भरी हुई थी। उन्होंने कहा, खुदीराम बोस की भस्मी को लोगों ने तावीज में रखकर अपने बच्चों को पहनाया था, ताकि उनके बच्चे भी खुदीराम बोस की तरह बहादुर देशभक्त बने। मैं उसी भावना से भाई आजाद की राख की चुटकी लेने आई हूं। और फिर राख ऐसी लूटी कि बड़ी मुश्किल से उसका कुछ अंश काशी ले जाने के लिए बचाया जा सका। ये सभा बहुत ही शानदार हुई और भारतीय स्वतंत्रता के महासेनापति आजाद की शानदार मृत्यु पर उनकी शान के अनुरूप ही उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुखदेव राज के इस मार्मिक संस्मरण में आज भी उस पल को हम देख पाते हैं। और श्रोताओं, इसके बाद सन 1931 में सुखदेव राज बिना लाइसेंस हथियार रखने के अपराध में गिरफ्तार हुए और उन्हें 3 साल सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल में भी उनके क्रांति के तेवर कभी बदले नहीं।
वो उन सौभाग्यशाली क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने आजादी का सूरज देखा, लेकिन अपने शहीद साथियों की याद उनके साथ हमेशा बनी रही और वो उनकी गाथा कहते रहे। 5 जुलाई सन 1973 को दुर्ग के पास ग्राम अंडा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए सुखदेव राज ने अंतिम सांस ली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। परिकल्पना और निर्देशन श्री मनोज श्रीवास्तव, समन्वय किया संजय यादव ने, और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
1: एपिसोड 95। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भवन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने कुम्हार के यहाँ धूप में सूखते हुए मिट्टी के कच्चे घड़ों को देखा है? जब तक वे घड़े आग की भट्टी में तपकर पक्के नहीं हो जाते, तब तक वे बहुत नाजुक होते हैं। अगर हवा का एक तेज झोंका आ जाए या कोई छोटा सा जानवर उनसे टकरा जाए या पानी की कुछ बूंदें उन पर पड़ जाएं, तो वे घड़े पल भर में टूटकर वापस मिट्टी के ढेर में बदल जाते हैं। उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारा यह शरीर भी उस कच्चे घड़े जैसा ही है। बाहर से यह कितना भी सुंदर और मजबूत दिखाई दे, लेकिन इसके भीतर की सांसें बहुत नाजुक धागे से बंधी हैं। कबीर साहब आज हमें इसी काया की वास्तविकता से परिचित करा रहे हैं, ताकि हम उसके रहते जीवन के असली अमृत को पा सकें। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत दार्शनिक सूत्र। यहु तन काचा कुंभ है, चोट चहूं दिसी खाई, एक राम के नाव बिन जदी तदी प्रले जाई। यहु तन काच का कुंभ है, चोट चहूं दिसी खाई, यहु तन काच का कुंभ है, चोट

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। हमारी स्वाधीनता के संघर्ष की अनगिनत गाथाएं आज इतिहास में दर्ज हैं। हम ये भी जानते हैं कि क्रांति का पथ अंधेरी गलियों सा था। क्रांति की गतिविधियां गुप्त तरीके से की जाती थीं। इसलिए कितनी ही शहादत एकांत में, निर्जन में, खामोशी के साथ भी हुई। ठीक शहादत के पल की बहुत सी बातें आज हम पढ़ सकते हैं। अगर वो गाथाएं आज हमारे पास हैं, तो इसलिए क्योंकि उन पलों से बचते हुए कुछ सौभाग्यशाली क्रांतिकारी जिंदा रह गए और आंखों देखी उस घटना को उन्होंने आगे चलकर दुनिया के सामने रखा। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे सुखदेव राज, जो स्वाधीनता संघर्ष की अमिट स्मृतियों के साथ आजाद भारत में 26 साल तक रहे और उन पलों को उन्होंने संस्मरण के रूप में लिखा, जिसका नाम है जब ज्योति जगी। सुखदेव राज दो बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं के चश्मदीद रहे हैं, जिन्हें इतिहास के पन्नों में पढ़ते हुए

आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। उनके लिखे वो बेहद महत्वपूर्ण संस्मरण हम आपसे साझा करें उसके पहले सुखदेव राज के क्रांतिकारी जीवन से आपका परिचय कराते हैं। सुखदेव राज का जन्म 7 दिसंबर सन 1907 को लाहौर में हुआ था। उनके पूर्वज पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर के रहने वाले थे। सुखदेव राज का क्रांतिकारी जीवन सन 1929 में शुरू हुआ, जब उनकी भेंट क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से हुई। वो उनसे बेहद प्रभावित हुए। उन्हीं की प्रेरणा और सहयोग से सुखदेव राज ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पुनः आरंभ की और बीए पास करके एमए में प्रवेश लिया। भगवती चरण ने उन्हें क्रांतिकारियों से संपर्क करने के लिए कलकत्ता भेजा। सुखदेव राज अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पहले से ही सीआईडी की नजर में थे। कलकत्ता में काम पूरा न होता देख वो बर्मा पहुंच गए और वहां जासूसों के जाल में फंस गए। लेकिन अपनी चतुराई से सीआईडी को चकमा देकर वो कलकत्ता वापस आ गए। यहां एक मित्र के घर रुककर उन्होंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन किए और फिर एक सीआईडी ऑफिसर के साथ वो मुफ्त में यात्रा करते हुए लाहौर पहुंच गए। उस सीआईडी अफसर ने मुफ्त में यात्रा तो कराई, सहयोग का प्रदर्शन भी किया, लेकिन लाहौर पहुंचकर उसने पुलिस को उनकी सूचना दे दी। वस्तुतः सुखदेव राज फरार नहीं थे, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। सुखदेव राज चंद्रशेखर आजाद के साथ क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से संलग्न थे। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना में भी वे शामिल थे। भगत सिंह जेल से मुक्त हों इसकी योजना कैसे बनी और उसमें भगवती चरण वोहरा की शहादत किस तरह से हुई, इसे सुखदेव राज ने अपने संस्मरण में लिखा है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।

भगत सिंह को छुड़ाने की तारीख 1 जून सन 1930 तय हुई। इस उद्देश्य से बम की टेस्टिंग के लिए रावी के किनारे जखीरे के जंगल को चुना गया। इसमें भाग लेने के लिए भगवती चरण वोहरा, वैशंपायन और सुखदेवराज नाव में बैठकर रावी के पार गए। इस घटना का जिक्र करते हुए सुखदेवराज अपने संस्मरण में कहते हैं, आखिर बातचीत करते करते हम रावी पर जा पहुंचे। नाव वहां पर तैयार खड़ी थी। मल्लाह मोहम्मद दीन ने उसे हमारे हवाले किया। भगवती भाई और मैं दोनों ही नाव खेना जानते थे, इसलिए मोहम्मद दीन को साथ लेना हमने उचित नहीं समझा। इसके अतिरिक्त कार्य की गोपनीयता की दृष्टि से भी उसे साथ लेना उचित नहीं था। नाव लेकर हम तीनों 1.5-2 फरलांग से अधिक चले गए। दोपहर के 11 बजे का समय और निर्जन घना जंगल। कुल जमा 3 प्राणियों को छोड़कर दूर दूर तक कोई पक्षी भी पर मारता हुआ वहां नजर नहीं आ रहा था। भगवती भाई ने बम निकाला, देखा तो बोले, इसका ट्रिगर तो ढीला है। इसके बाद मैंने और वैशंपायन ने भी बम को देखा, ट्रिगर वास्तव में ढीला था और ऐसी स्थिति में विस्फोट करना खतरे से खाली नहीं था। मैंने और वैशंपायन ने कहा कि ये बम टेस्ट करने के योग्य नहीं है, मुनासिब यही है कि वापस लौट चलें, कल दूसरा बम लाकर टेस्ट कर लेंगे। परंतु भगवती भाई ने हम लोगों की एक नहीं सुनी। वे बोले, 1 जून को एक्शन करना है और 28 मई आज हो गई है, यदि आज बम टेस्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, ये काम आज किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। होशियारी के साथ मैं बम को चलाए देता हूं, तुम लोग एक तरफ हट जाओ। भगवती भाई बम फेंकने के लिए गड्ढे के पास ही एक बाउंड्री स्टोन पर खड़े हो गए। अभी बम का पिन निकालकर उसे फेंकने के लिए हाथ में भी न उठा पाए थे कि विनाशकारी विस्फोट उनके हाथ में ही हो गया। चारों ओर धुएं के बादल छा गए। हम लोग भगवती भाई की ओर दौड़े। धुआं कुछ कम हुआ तो देखा कि वो जमीन पर बुरी तरह घायल होकर पड़े हैं। उनका एक हाथ कलाई से उड़ गया था, दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थीं, पेट में एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, कुछ आंतें निकलकर बाहर आ गई थीं। उनके शरीर से प्रवाहित रक्त की असंख्य धाराएं मातृभूमि का अभिषेक किए जा रही थीं। वैशंपायन ने अपने शरीर के तमाम कपड़े फाड़कर भगवती भाई को पट्टियां बांध दी, परंतु रक्त की अविरल धारा उनके शरीर से बही जा रही थी। पास के गड्ढे का पानी हैट में भरकर वैशंपायन ला रहा था और उनके मुंह में रह रहकर डाल रहा था, लेकिन उनकी हालत प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। मैं स्वयं घायल ही था, लेकिन वैशंपायन को नगर की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे भगवती भाई के पास छोड़कर सहायता के लिए मैंने बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन श्रोताओं, सुखदेवराज के प्रयास निष्फल रहे। जब तक क्रांतिकारियों की सहायता शहर से जंगल तक पहुंचती, भगवती चरण वोहरा शहीद हो चुके थे। सुखदेवराज लिखते हैं, घना अंधकार, टॉर्च की रोशनी के सहारे हम जंगल में घुसे। सहायता के लिए आए क्रांतिकारी छैल बिहारी को पुकारना प्रारंभ किया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इसी बीच टॉर्च की रोशनी में सफेद कपड़े की धज्जियां दिखाई दी, उन्हीं के सहारे आगे बढ़े। बाबू भाई भगवती चरण का शरीर शांत एकांत में पड़ा था। सूर्यास्त के साथ ही बाबू भाई महायात्रा का बहुत सा भाग चलकर पार कर चुके थे। दूर, बहुत दूर, हमारी पहुंच से बाहर। केवल हमारी श्रद्धांजलि ही उन तक पहुंचने में समर्थ थी, इसलिए उन्हें ले जाने के लिए हम जो चादर लाए थे उसी में उनका पार्थिव शरीर लपेट दिया। 1 मिनट मौन हो शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर एक महान नेता खोकर हम असहाय ही बंगले पर वापस लौटे। इस तरह सुखदेव राज के संस्मरण से घने जंगल के एकांत में एक खामोश शहादत के पलों के हम साक्षी होते हैं।

और श्रोताओं, दूसरी महत्वपूर्ण घटना सुखदेव राज जिसके चश्मदीद थे वो थी चंद्रशेखर आजाद की शहादत। चंद्रशेखर आजाद को वो भैया कहकर पुकारते थे और सुखदेव राज को चंद्रशेखर आजाद सिराज के छद्म नाम से बुलाते थे। कई साथियों के गिरफ्तार हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद का दल बहुत छोटा रह गया था। क्रांति गतिविधियों को चलाने के लिए उन्हें कानपुर और इलाहाबाद आना जाना पड़ता था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी सन 1931 की सुबह चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज किसी गंभीर समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे। उनके एक गद्दार साथी वीरभद्र तिवारी ने उनकी उपस्थिति की सूचना पुलिस को दे दी। देखते ही देखते पुलिस के एक बड़े दल ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। अपने संस्मरण में सुखदेव राज लिखते हैं, अभी भैया से बातें हो ही रही थी कि एक मोटर सामने सड़क पर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर और दो कांस्टेबल सफेद कपड़ों में उतरे। हम लोगों का माथा ठनका। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? भैया का हाथ अपनी पिस्तौल पर गया और मेरा हाथ भी अपनी पिस्तौल पर। गोरे ने जैसे ही बातें शुरू की, हम दोनों ने पिस्तौल खींच ली और गोली से उत्तर दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल पहले छूटी। गोली भैया की जांघ में लगी, आजाद की गोली गोरे के कंधे में लगी। दोनों ओर से दनादन गोलियां चल रही थीं। गोरे की गोली से भैया की जांघ की हड्डी चूर चूर हो गई। एक गोली उनकी दाहिनी भुजा को चीरती हुई फेफड़े में जा घुसी, फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उनका बायां हाथ ही बिजली बनकर कौंध उठा था। उनकी पिस्तौल गर्जी और नॉट बाबर की कलाई टूट गई। पिस्तौल उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने मोटर पर भागने की चेष्टा की, परंतु इससे पहले ही भैया की गोली से मोटर का टायर बेकाम हो चुका था। प्राण बचाने के लिए नॉट बाबर ने मौलश्री के एक पेड़ की आड़ ली। सिपाही कूदकर नाले में जा छिपे, इधर हम लोगों ने भी एक जामुन के पेड़ की आड़ ली। एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई। अचानक भैया ने कहा, सिराज तुम निकल जाओ। ये वास्तव में उनका कवरिंग एक्शन था। अपने प्राणों को होम करके भी अपने एक साथी की जान बचाने के लिए वे आतुर थे। भैया अक्सर कहा करते थे, जो क्रांतिकारी लड़कर भाग निकलता है वो दूसरी बार के संघर्ष के लिए जीवित रहता है। ये सब सही होते हुए भी भैया को पार्क में शहादत के समय छोड़ देने का दुख मुझे सदा रहा है। भैया के प्राण विसर्जन के उपरांत भी उनके शव के पास फटकने का साहस किसी अफसर या सिपाही में नहीं था। वे दूर से ही गोलियों की बाढ़ दागते रहे। जमीन पर पड़े जामुन के पत्ते उनके रक्त से तर बतर हो गए थे। उनकी शव यात्रा के दिन सारे शहर में हड़ताल रही। शव यात्रा में चलने वाले लोग नंगे सिर और नंगे पांव थे। अस्थियों पर शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। सभा में सर्वश्री टंडन जी, मंगलदेव सिंह, काशीराम तिवारी, वसंतलाल शर्मा, शिव विनायक मिश्र, पद्मकांत मालवीय, कमला नेहरू और शचीन्द्रनाथ सान्याल की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सान्याल ने भाषण दिए। श्रीमती सान्याल दो चार वाक्य ही उस दिन बोली, परंतु उन दो चार वाक्यों में आग भरी हुई थी। उन्होंने कहा, खुदीराम बोस की भस्मी को लोगों ने तावीज में रखकर अपने बच्चों को पहनाया था, ताकि उनके बच्चे भी खुदीराम बोस की तरह बहादुर देशभक्त बने। मैं उसी भावना से भाई आजाद की राख की चुटकी लेने आई हूं। और फिर राख ऐसी लूटी कि बड़ी मुश्किल से उसका कुछ अंश काशी ले जाने के लिए बचाया जा सका। ये सभा बहुत ही शानदार हुई और भारतीय स्वतंत्रता के महासेनापति आजाद की शानदार मृत्यु पर उनकी शान के अनुरूप ही उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुखदेव राज के इस मार्मिक संस्मरण में आज भी उस पल को हम देख पाते हैं। और श्रोताओं, इसके बाद सन 1931 में सुखदेव राज बिना लाइसेंस हथियार रखने के अपराध में गिरफ्तार हुए और उन्हें 3 साल सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल में भी उनके क्रांति के तेवर कभी बदले नहीं।
वो उन सौभाग्यशाली क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने आजादी का सूरज देखा, लेकिन अपने शहीद साथियों की याद उनके साथ हमेशा बनी रही और वो उनकी गाथा कहते रहे। 5 जुलाई सन 1973 को दुर्ग के पास ग्राम अंडा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए सुखदेव राज ने अंतिम सांस ली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। परिकल्पना और निर्देशन श्री मनोज श्रीवास्तव, समन्वय किया संजय यादव ने, और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।